पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही है। कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान। कहंदे ने मैं हैरान हां, मैनू सजा क्यों मिल रही ना।

चोरी की ना मैं डाका मारिया ना मैं कोई कतल कीता कोई गलत काम ही नहीं कीता सजा किस गल दी क्या अपराध संत है कीना बांध पोच कुंचर को दीना बांध पोट कुंचर को दीना कुंचर पोट ले

आज 12 साल दा आखरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहे है, एडा मीह पै रहे है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे

बादशाह चुक चुक जा रहे सात सखित बोलो श्री क्योंकि जितना फल लगता है टैणी नू और टैणी उतनी चुकती चली जाती है एडी सेवा करके 12 साल सेवा की गुरु अमरदास जी ने ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए सत्संग।

बेशक चखड़ चलदा होवे मी बसदा होवे ए ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नितनेम विच फर्क ना पवे तां बख्शीशां दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं।

प्रगटिया गुरु नानक आख्या गुरु नानक प्रगटिया राय पोएं दी तलवंडी विच आप नारायण कला तार जग में परवरे राय पोएं दी तलवंडी।

कोई गल नहीं, परमेश्वर तेनु होर देवेगा, होर देगा ते। उन्हें आख्या प्रभु ता परमेश्वर पिछों देवेगा, पहला तू मेनू हर जाना दे। साहब जी दी

13 तक गुरु नानक ने गिणिया ते जदों 13 आख्या ते फिर जेड़ा आउंदा गया ओदी चोली भरी गई ते कहंदे गए 13 13 13 सार संगत बोलो श्री 13 ही 13 करके चोलियां भर रहे बाला लिया लिया के

मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया

बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी कहन लगी इवे ना आखो मेरा नानक संसार विच डुबन वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है नानक कदे डुब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा।

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पाओगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना है। साथ सगत बोलो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या कर दे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ए सारियां सिफरां हन, सिफरां ए सारे जीरो हन, और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा, एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाएगा, दो जीरो पावेगा सौ, तीन पावेगा हजार। इसे तरह दुनिया दे जितने कर...

कर्म सारे नाश हो जाने। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणा। सात सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन देव पातशाह।

सिंह सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करन वाला है। जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करता, और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करता है। सात सगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु दा खजांची है। जो अकाल पुरख वाहेगुरु दे खजाने विच बख्शीशा हन तू उना नू वंडन वाला है। सात सगत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं ए धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नू जानिया है इस वास्ते संसार विच तू महाराजिया का महाराज है। तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं। इस वास्ते मैं सारे

मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के जांदा है। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

कोई अवर ना सूझा हर नामो अंत छड़ाता, क्योंकि जीवन तो सुख देंदा ही देंदा है, जीवन तो बाद कौन बाह फड़ेगा, कौन छड़ावेगा सवाए प्रभु दे नाम दे। ते जे सतगुरु ने इस नाम दे लड़ लाया, हर नाम दिया गुर पर उपकारी, धन धन गुरु का पिता माता, वो आप दा धन ओदे माता पिता भी धन। ओ सतगुर अपने को सदा नमस्कारी, मैं ओ सतगुरु सदा नमस्कार करा, जित मिले हर नाम मैं जाता, जिसने जाग अंदर कुदरत वरताई। आम तौर ते महापुरुषा ने वड्याईयां प्राप्त करके बख्शा लैके अपनी पूजा करवाई, अपना सत्कार कराए, लेकिन धन गुरु नानक ने निरंकार नाल जोड़े है। आ जेड़ी पौड़ी भाई साहब भाई गुरदास जी ने कही है, तरी निशानी कौंस दी, मक्के अंदर पूज कराई, मक्के अंदर गुरु नानक दी एक खड़ाम पई, हाजी जांदे ने हज करदे ने इस खड़ाम नूं मत्था टेक, लेकिन गुरु नानक ने नहीं कहा मेरी खड़ाम नूं मत्था टेकना। गुरु नानक तो मक्के अंदर भी ये कहंदे ने प्रभु की पूजा करो, उन्हां तां प्रभु की पूजा कराई। ये गल वखरी है कि प्रभु नाल जोड़न वाले की खड़ाम का भी सत्कार अज तक हुंदा चले आ रहा। जिथे जाए जगत विच एक मक्के की गल की, बाबे बाज ना खाली जाई, संसार ते जिथे भी गुरु नानक दे चरण पए ने लोकां दे जीवन बदलते चले गए। जेड़ा जेड़ा भी गुरु नानक दे सामने आया ओदे जीवन च तब्दीली आउंदी चली गई। नाम दे सदका गुरमत दे सदका घर घर बाबा पूजी है, हिंदू मुसलमान गुआई, घर घर च गुरु नानक की जय जयकार हो रही है।

पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने कि बंदगी करदा हां, ओदी महान कृपा नाल सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी जात का हो के लोग इन मथे टेकते ने। है ये क्यों? बंदे का सुभा है, बंदा किसी की वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करता, किसी की प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करता। कबीर जी नूं ए सजा दिती गई कि इनू पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पाके गंगा विच सुट दिता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझते ने, ते बंदगी वाले पुरुष नूं गंगा विच सुटन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया ओदा जिक्र कीता है। पर कहंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने ओदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। ਤਾਂ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारा पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। पांके हृदय बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले ले नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियारे, तीन बार पतिया भर लीना। कहंदे ने होनी नहीं, इन्होंने तीन बारी अगे भी मेरी परीक्षा लई, तीन बार पतिया